कौन गर्भ ना आयो। ऐसे दीन दयाल सतगुरु बाणी के बोहेथ शांति दे पुंज शहीदां दे सिरताज पंजवें पातशाह

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गौर प्रसाद चक्र चिहन अर बरन जात अर पात नहन जेह रूप रंग अर रीख पीख को कह न सकत केह अचल मूरत अनभउ प्रकाश अमितोज कहिजै कोट इंद्र इंद्राण साहि साहाण गणिजै त्रिभुवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन तृण कहत तो सर्व नाम कथय कवन कर्म नाम बरनत सुमत जय जयकार जास जग अंदर मंदर भाग जुगत सेव रहता गुर पूरा पायो बड भागी लेव लागी मेदन भर सहता पै पंजन पर पीर निवारन कल सहार तू हे जस बकता कोल सोढ़ी गुर रामदास तन धर्म तुझा अर्जन हर भगता फल द्रोम गुर सिख संद गत आद अंत बिस्माद अंत अनंत न जानिय आद परम परमाद आद परम परमाद नाद मिल नाद शब्द धुन सलल है सलल समाई नाद सरता सागर सुन नरपत सोत नृप होत जोत गुरमुख गुण गुर जान राम नाम परसाद पहे गुर ते गुर अर्जन हर का नाम हृदय नित त्याई

खरा है अग पाप सकल मल काम क्रोध यार लोभ मोह बस करे सुबे बल सदा सुख मन वसे दुख संसार खोवे गुरु नवनिध दरियाओ जन्म हम कालख तोवे सो कहो टल गुर सेविए एहिन सुसहज सुभाए दर्शन परसे गुरु कै

दिवसरा दोदाई दया खेले सगल जगत चंगी आईयां बुरे आईयां वाचे धर्म दूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम ते आया गए मशक्कत काल नानक ते मुख उजले।

पौड़ी वटी हो वडाया पार तेरा मर्तबा रंग रंग ने कर जापन करतबा जी आंदर जियो सब से जान ला सब कुछ तेरे बस तेरा घर पला तेरे कार्य आनंद बधाई तुद कर मान महत्ता तेज आप।

करतबा, रंग परंग नेकना जापन करतबा, जिया अंदर जियो सब किस जान ला, सब किस तेरे वास तेरा कर भला, तेरे घर नंद वधाई तुद घर

वाहे गुरु चेत आवे, चेत आवन का सदका सर्व सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रच्छे आरे आयत, देग तेग फतहे बिरद की पैज, पंथ की जीत, श्री

जब लो नहीं पाग लीलार उदय, तब लो प्रमति फिरते बहुत आयो। कल को समुद्र में बूढ़त थे, कब हो मिट है नहीं रे पछताया। तत् विचार यह मथुरा, जग तारन को अवतार बनायो। जपियो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ न आयो। रहिंदे गुर दरियाओ विच, मीन कुलीन हेत निर्बाणी। दर्शन देख पतंग ज्यों, ज्योति अंदर ज्योत समाणी। शब्द सुरत लिव मिर्ग ज्यों, भीड़ पई चित अवर नयाणी। चरण कमल मिल भवर ज्यों, सुख संपट विच रैन विहाणी। गुर उपदेश न विसरै, बाबी हे ज्यों आख वखाणी। गुरमुख सुख फल पिरम रस, सहज समाद साध संग जानी। गुर अर्जन विटों कुरबाणी, गुरमुख सुख फल पिरम रस, सहज समाद साध संग जानी। गुर अर्जन विटों कुरबाणी, सुख टल गुर सेवियै, अहनिस सहज सुभाय। दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाय। होवै सिफत खसम दी, नूर अरसों कुरसों चट्टी है। तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कट्टी है। सज्जन सच्चा पातशाह, सिरशां दशाह। जिस पास बैठियां सोहिया, सबना दावी साह। सज्जन सच्चा पातशाह, सिरशां दशाह। जिस पास बैठियां सोहिया, सबना दावी सा।

तप तप खपै बहुत बेकार। जय तन बाणी विसर जाए, ज्यों पक्का रोगी विललाए। जियो तपत है बारो बार, तप तप खपै बहुत बेकार। जय तन बाणी विसर जाए, ज्यों पक्का रोगी विललाए। बहुता बोलन चखण होए, विण बोले जाने सब सोए। रहा जिन कन कीते अखी नाक, जिन जेवा दित्ती बोले तात, जिन मन राखिया अग्नि पाए, वाजे पवन आखे सब जाए। जिता मोह परीत स्वाद, सबा कालख दागा दाग, दाग दोष मोहे चलिया लाए। दरगह बैसण नाही जाए, कर्म मिले आखण तेरा नाओ। जित लग तरना होर नहीं थाओ, जे को डूबे फिर होवे सार। नानक साचा सर्वदातार, कर्म मिले आखण तेरा नाओ। जित लग तरना होर नहीं थाओ, जे को डूबे फिर होवे सार। नानक साचा सर्वदातार।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

हम अवगुण परि एक गुण नाही, अमृत छाड बिखै बिख खाई, माया मोह परम पै भूले, सुत दारा स्यो प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राख शरणाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राख शरणाई। सो कहौ टल गुर सेवियै, अहनिस सहज सुभाई। दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाई। होवै सिफत खसम दी, नूर अर सहु कुर सहु चटियै। तुद डिठी सच्ची पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटियै। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर साहां दै साहु। जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दा वेसाहु। सज्जन सच्चा पातशाहु, सिर साहां दै साहु। जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दा वेसाहु। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, तनासरी महला तीजा, घर दूजा चौपदे। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, एहो तन अखुट ना निखुट ना जाए। पूरा सतगुर दिया दिखाए, एहो तन अखुट ना निखुट ना जाए। पूरा सतगुर दिया दिखाए, अपने सतगुर को सद बल जाई। गुर किरपा ते हर मन वसाई, से धनवंत हर नाम लिवलाई। गुर पूरै हर धन परगासिया, हर किरपा ते वसै मन आई। रहाउ अवगुण काट, गुण हृदय समा।

तक न पाया जाए। गौर प्रसाद वसै मन आए, सब मह वसै प्रभ एको सोए। गौरमति घट प्रगट होए,

0: संत जना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो, जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा नाम देवायो, सर्व सुकर नाम वडाई, गुर प्रसाद नानक मत पाई सलो।
1: पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत, दिवस रात दुए दाई दाया, खेलै सगल जगत, चंगियाईयां।

तिनी पिता रंग स्यों जिनको लिख्या आ। हम अवगुण भरे एक गुण नाही अमृत शाड़ बिख।

इत संजम दुख जाय पौड़ सेव किति संतोख तिन सचो सच त्यायो निमंद पैर रखियो कर सुकृत धर्म कमायो।

0: सच
1: थोड़ी तुर करम जिना को तुझ पाया तो तिनी खसम ते आया इन्ना जनता के बस किश नाही तुझ वे की जगते उपाया एक नानू तुमने लैका पत दुखवाया गुर कृपा दे जाने जिथे तुझे आप जाया सहजे ही सच समाया।

अवलोक्या ब्रह्म परम सब छुटक्या दिव्य दृष्ट कारण करन सत गुर गुर सेव अलख।

0: मन बच क्रम सेविया सच्चा।
1: प्रताप सदा गुर का घट घट प्रगास पिया जस जन के, एक पढ़े सुने गावे प्रभाते करे इशनान, इशनान करे प्रभात शुद्ध मन गुर पूजा बिरसैत करूं, कंचन तन होए परस पारस को ज्योत स्वरूपी ध्यान तरंग, जग जीवन जगन्नाथ जल थल में रेहा पूर्व बोविद बन रंग, सतगुर गुर सेव अलखगत जाकी।

0: सब सदका
1: वाहो वाहो का बड़ा तमाशा आपे हसे आप ही चितवे आपे चंद सूर प्रकाशा आपे जल आपे थल थमन आपे किया कट कट बासा आपे नर आपे फुन नारी आपे सार आप ही पासा गुरमुख संगत सबे बिचारो वाहो वाहो का बड़ा तमाशा किया खेल बड़ मेल तमाशा वाहे गुरु तेरी सब रचना तू जल थल गगन पयाल पूर रहया अमृत ते मीठे जाके बचना माने प्रेमाद क्रुद्रा दिख काल का काल निरंजन जचना गुर प्रसाद पाए परमारथ सत संगत से ते मन खचना किया खेल बड़ मेर तमाशा वाह गुरु तेरे सब रचना
2: अगम अनंत अनाद आद जैसे कोई न जाने है शिव बिरंच धर ध्यान नितेज सबेद बखाने निरंकार निर्वैर अवर नहीं दूसर कोई पंजन गण समथ तरण तारण प्रभ सोई नाना प्रकार जिन जग कियो जन मथुरा रस नारस है श्री सत नाम करता पुरख गुर रामदास चित्त है बसै
3: अब राखो दास पाठ की लाज जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की हर नाखत फारे कर आज फुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी शीनत बस्तर दीन बहुत साल सोदामा अपदा ते राखिया गन का पर्द पूरे तहकाज श्री सतगुर सो परसन कलयुग हुए राखो दास पाठ की लाज
4: श्री गुरु साहिब सभी ऊपर करी कृपा सत युग जिन त्रु पर श्री प्रहलाद भगत उदरियंग हस्त कमल माथे पर धरियंग अलख रूप जी रखिया ना जाई साधिक सिद्ध सगल सरनाई गुर के बचन सत जी तारो मानस जन्म देह निस्तारो गुर जहाज खेवट गुरु गुर बिन तरिया ना कोए गुर प्रसाद प्रभ पाईऐ गुर बिन मुक्त ना होए गुर नानक निकट बसे बनवारी तिन रहना थाप जोत जग तारी रहने पंथ धर्म का किया अमरदास पल्ले को दिया तिन श्री रामदास सोडी थिर थप्यो हर का नाम अखै निद अप्यो अप्यो हर नाम अखै निद चोह जुग गुर सेवा कर फल रहियं बंदे जो चरण सरण सुख पावै परमानंद गुरमुख कहियं प्रतख दे पार ब्रह्म स्वामी आद रूप पोखन परनन सतगुर गुरु सेव

निर्मल नाम सुधा पर पूरन शब्द तरंग प्रगटत दिन आगर गहर गंभीर था आयात बड सो पर सदा सब विद रत नागर।

सहन सुसहज सुपहाए दर्शन परसे गुरु का जन्म मरण दुख हुए सिफ दुख संबंधी नूर अरसह कुरसह तुदिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी सज्जन सच्चा पातशाह हांद जिस पास बैठिया सोही सबना देसा सज्जन सच्चा पातशाह सिर सहांद जिस पास बैठिया सोही सबना देसा सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी सोरठ महला पहला तू प्रभ दाता दान मत पूरा हम थारे पेखारी जियो मैं क्या मांगो किस थिर ना रहाई हर दीजै नाम प्यारी जियो तू प्रभ दाता दान मत पूरा हम थारे पेखारी जियो मैं क्या मांगो किस थिर ना रहाई हर दीजै नाम प्यारी जियो घट घट रब रहया बनबारी जल थल महियल गुप्त वरत गुर शब्दी देख निहारी जियो रहाओ मरत पयाल आकाश दिखायो गुर सतगुर कृपा धारी जियो सो ब्रह्म अजोनी है पी होनी कट पीतर देख मुरारी जियो जन्म मरण को इहो जग बपड़ो इन दूजे भगत विसारी जियो सतगुर मिले ता गुरमत पाई है साकत बाजी हारी जियो सतगुर बंधन तोड़ निरारे
ਬਹੁੜ ਨਾ ਗਰਭ ਮੰਝਾਰੀ ਜੀਓ। ਨਾਨਕ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਪਰਗਾਸਿਆ, ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜੀਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਨਿਰਾਰੇ, ਬਹੁੜ ਨਾ ਗਰਭ ਮੰਝਾਰੀ ਜੀਓ। ਨਾਨਕ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਪਰਗਾਸਿਆ, ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤਾ ਦਾਨ ਮਤ ਪੂਰਾ, ਹਮ ਥਾਰੇ ਭੇਖਾਰੀ ਜੀਓ। ਮੈਂ ਕਿਆ ਮਾਂਗੋ ਕਿਛ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਾਈ, ਹਰ ਦੀ

0: नानक मेरे शरीर का एक रथ कृथवा हो, जुग जुग फिर बटाई है ज्ञानी बुझता है। सतजुग रसंतों का धर्म ग्रथवा हो, त्रित रथ जते का जोर ग्रथवा हो। द्वापर रथ पे का सतग्रथवा हो, कल युग रथ गण का कूट ग्रथवा हो। महला पहला।
1: शाम कहे सितंबर स्वामी सच में अच्छे साथ रहे, सबको सच मावे। ऋग कह रहे प्रभु राम नाम देवा मैसूर, नाय ले प्रश जाए तब नानक मुखंतर पाए। नानक तो मुखंतर पाए, जुज में जोर छली चंद्रावल कान कृष्ण जात भया। पार जात गोपी ने आया बिंद्रा मन में रंग किया, कल में वेद अथर्वण हुआ नाव खुदाई अलोपया। नील बस्तर ने कपड़े पहरे त्रुप खानी अमल किया, चारे वेद हुए सुचार पढ़े गुण तीन चार विचार। पाओ

प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। चित आवन का सदका सर्ब सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रचिया रे आयत देग तेग फतेह बिरद की पैज

प्रसाद भेटा किया गया है तना दी अरदास समूह संगत अते टहलियां दी अरदास सतगुरु जिया सर्व बात साध संगत नू अपने दारों करां सिखी सिद्धक परोसा नाम दान बख्शना शुभ पावनावां पूरियां करनिया आप जी दे हजूर कड़ाहा प्रसाद दी देग हाजर है दर परवान होवे परवान होया प्रसाद संगत विच वरतौण दी आग्या बख्शो सुख होवे नाम चित आवे सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाहे बंद होवन नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत।